0: ठंडे में लोग रहते हैं, यूं मधुर वाले भट्टी में छुट्टी आए, अभी सौ स्थान
1: Thank you.